0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल बीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।

0: 26 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और तीन या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling will be held at 11 polling stations of Magrahat Pashchim Assembly constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly constituency in the state. More from our correspondent.
2: The Election Commission of India has ordered re-polling in 11 booths in Magrahat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision after analyzing the reports of returning officers and observers. The re-polling will start on 7 a.m. in the morning and end on 6 p.m. in the evening. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elected for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling will be held at 11 polling stations of Magrahat Pashchim Assembly constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly constituency in the state. More from our correspondent.
2: The Election Commission of India has ordered re-polling in 11 booths in Magrahat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision after analyzing the reports of returning officers and observers. The re-polling will start on 7 a.m. in the morning and end on 6 p.m. in the evening. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG lead at refineries and we increased our domestic production by 60%. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement

0: में आज की हसीन सुबह से आगाज करते हैं कार्यक्रम का। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरत, एंड टू यू एंड आवर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी वेलकम यू अलोंग। दिस इज आज सवेरे, वेयर वी शेयर द लेटेस्ट नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टुडे। टुडे इज 2nd of May 2026, एंड देयर इज अ क्वोट दैट आई रिमेंबर रीडिंग टुडे। एज चार्ल्स डिकेंस वंस सेड, The sun himself is weak when he first rises and gathers strength and courage as the day gets on. So reflecting on this quote, listeners, get up and move, of course, while listening to us only. So the sun's been up for a while. It's had a head start. And now it's your turn to make it count. Make each day count.
0: बिल्कुल शगुन, फिलहाल तो, लेकिन देखा जाए तो जो सूरज है अपने शबाब पर है, क्योंकि गर्मी जो है वो फिर से हो गई है, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा है एक बार फिर से। बिल्कुल, तो इसलिए अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आगे बढ़िए और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो है वो,
1: काउंट योर ब्लेसिंग्स।
0: बिल्कुल,
1: सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
0: जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबर से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। इनमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और आयोग ने बताया है कि संबंधित मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को इन मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को अमान्य घोषित किया है। आयोग ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखा है।
1: Reserve Bank of India has said that 98.47% of 2,000 rupees denomination banknotes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes on 19th May 2023 as part of its currency management exercise. So at that time, notes worth 3.56 lakh crore rupees were in circulation. So this has now declined to 5,451 crore rupees as of 30th of last month. The facility to exchange 2,000 rupees notes has been available at 19 RBI issue offices since the withdrawal announcement.
0: और अब जनगणना की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना शुरू हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders.
0: और शगुन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही और श्री पुरी ने बताया कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से

0: extended the lead with a hard-fought 23-21, 19-21, 21-12 win over Xiu Xiang Shei and Wang Qilin. India sealed the tie when Ayush Shetty held his nerve to beat Lin Chunyi, confirming a comprehensive team victory. The Indian women's team, led by PV Sindhu, failed to make it past the group stage as they were eliminated by China in the Uber Cup 2026.
1: और श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर. रुक करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का. तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
0: यस फरहत, बिगिनिंग विद चेन्नई, वेयर सदर्न रेलवेज चेन्नई डिवीजन हैज सरपास्ड इट्स पार्सल रेवेन्यू टारगेट ऑफ 74.22 करोड़ फॉर 2025-26, अर्निंग अ रिकॉर्ड 74.56 करोड़ एंड देन रीइंफोर्सिंग इट्स पोजिशन as one of the Indian Railway's leading freight and logistics hubs. The division transported 1,288 tons of tyres from Korukuppet and Tambaram to destinations across the country. It also partnered with the Central Warehousing Corporation to run a parcel cargo express train carrying branded tyres to Okhla. This is did by Central Warehousing Corporation. Southern Railway has also commissioned new parcel offices at Chengalpet and Jolarpet, while additional parcel terminals have been proposed to Royapuram, Tada and Mundiyapakkam.
1: और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं. दिल्ली में आज तीन महत्वपूर्ण खबर है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वगणना के माध्यम से जनगणना में अपना विवरण दर्ज किया. राजधानी दिल्ली के सभी वार्डों में जनगणना 2027 अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि ये डिजिटल पहल नागरिकों को अपने घर की जानकारी सीधे जमा करने की सुविधा देती है. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये प्रक्रिया आसान और सुरक्षित है, जिससे प्रत्येक नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उज्ज्वला योजना आज करोड़ों महिलाओं के जीवन में बड़े परिवर्तन का आधार बन चुकी है. 2016 में शुरू हुई इस योजना ने कल एक दशक पूरे कर लिए. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को धुएं और बीमारियों से बचाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का उपहार दिया. उन्होंने कहा कि रसोई के पुराने
0: संघर्ष and Jolarpet, while additional parcel terminals have been proposed to Royapuram, Tada and Mundiyapakkam.
1: और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं. दिल्ली में आज तीन महत्वपूर्ण खबर है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वगणना के माध्यम से जनगणना में अपना विवरण दर्ज किया. राजधानी दिल्ली के सभी वार्डों में जनगणना 2027 अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि ये डिजिटल पहल नागरिकों को अपने घर की जानकारी सीधे जमा करने की सुविधा देती है. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये प्रक्रिया आसान और सुरक्षित है, जिससे प्रत्येक नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उज्ज्वला योजना आज करोड़ों महिलाओं के जीवन में बड़े परिवर्तन का आधार बन चुकी है. 2016 में शुरू हुई इस योजना ने कल एक दशक पूरे कर लिए. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को धुएं और बीमारियों से बचाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का उपहार दिया. उन्होंने कहा कि रसोई के पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती नारी शक्ति की ये तस्वीर देश में हो रहे सच्चे महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है. और राजधानी दिल्ली में कल कैच द रेन अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. ये अभियान जल संरक्षण को सशक्त बनाने और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी का संकल्प बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया. इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रीमती सरकार द्वारा 50,000 तक की सब्सिडी, पानी के बिल में 10-15% तक की छूट और निःशुल्क तकनीकी सहायता जैसे कदम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
0: Farhat, we'll focus now on Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has said that efforts are underway to restructure KR market with proper utilization of this historic building. He was speaking after inaugurating the revamped management of the ground floor parking complex at KR market in Bengaluru yesterday. The senior minister said that private parking will be allowed alongside government parking facilities. He added that following repairs at KR Market and the relocation of vendors, the market has been made more usable. Stating that development does not happen overnight, he added that all legislators in Bengaluru will be taken into confidence for the city's development. He also spoke of a plan to construct about 138 kilometers of elevated structures and underpasses to ensure smoother vehicular movement. The elevated structures, he then added, that they will help prevent the encroachment of roadside properties. This was the update I had from Bengaluru.

0: और शगुन मुंबई का रुख कर लेते हैं अब। नीट यूजी 2026 परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे ने कल दिन के समय मेगा ब्लॉक न चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि आवश्यक इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए रेलवे 2 और 3 मई को मध्य रात्रि मेगा ब्लॉक चलाएगा और ये ब्लॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विद्या विहार स्टेशनों के बीच मेन लाइन पर, साथ ही ठाणे और वाशी नेरुल के बीच ट्रांस हार्बर लाइन पर लागू रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो संशोधित ट्रेन समय सारणी देखें और आवश्यक यात्रा व्यवस्था पहल से करें। वहीं महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड इस वर्ष फरवरी मार्च में आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। छात्र परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों के लिए एक समर्पित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित महालक्ष्मी सरस बिक्री और प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन आज मुंबई के बांद्रा कुला परिसर स्थित MMRDA ग्राउंड में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के अधीन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में करेंगे। ये प्रदर्शन आज से 14 मई तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।
1: Now turning our attention to Hyderabad, the Telangana government has introduced a new centralized procurement policy to improve accountability in educational material distribution. Chief Minister A. Revanth Reddy has set June 15th as the deadline to supply all necessary educational items to students across the state. In a review meeting, the Chief Minister emphasized that students perform better when they receive uniforms, notebooks and other educational materials on time. He pointed out that the old system had many problems. The new centralized system aims to stop these issues, and officials have been strictly warned that quality materials must be supplied without any compromise. To ensure proper distribution, the government will appoint nodal officers at the mandal level. Officials must verify that every student receives complete materials and gather feedback about quality. The government has also decided to form a coordination committee involving SC, ST, OBC, minority and education departments to work together for this initiative.
0: और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर एक अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की विशेष पीठ का गठन किया है। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संबंध में 4 मई को मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। और श्रोताओ, वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। जी बिल्कुल, आज आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में आज दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में बारिश के साथ आंधी आने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: If I talk about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees in Chennai. Bengaluru is expected to have rain or thunder showers and they would occur towards afternoon or evening. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 35 degrees Celsius in Bengaluru. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will be, minimum temperature will be around 25 degrees and maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad, Farat.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो शगुन, इतिहास में सबसे पहले क्या है खास?
1: Well, yes, today, Farat, let's tell our listeners that it's World Tuna Day. And this day, it's observed annually to highlight the importance of tuna and also promote sustainable fishing practices across the globe. Well, sharing the theme for this year, it's advocating for tuna conservation. And this theme, it focuses on the urgent need to manage tuna stocks sustainably as they are vital for, number one, global food security, number two, economies, number three, marine ecosystems. The day draws attention to threats like overfishing, also climate change, encouraging governments and industries to adopt responsible fishing practices.
0: बिल्कुल शगुन, और ट्यूना मछली के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र की सबसे मतलब महत्वपूर्ण और महंगी मछलियों में से

0: एक है और काफी बड़ी होती है, मोटी होती है, हम बता दें अपने श्रोताओं को जिनको नहीं मालूम है। जी बिल्कुल। और अगर आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, प्रशांत और अटलांटिक महासागर की तरफ रुख करेंगे तो इस तरह की मछलियां जो है वो वहां पर मिल जाती हैं।
1: राइट। एंड ट्यूना इज वन ऑफ देम, एज यू आर आल्सो टेलिंग द लिसनर्स, इट्स मोस्ट कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीशीज विद मिलियंस ऑफ टन्स इट्स हार्वेस्टेड एनुअली, एंड दिस एक्चुअली मेक्स इट्स

0: कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसी दास चतुर्वेदी को। उनकी गणना अगर बात की जाए तो अग्रण्य पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है। हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखक की अभिरुचि के लक्षणों में पत्रकार बनने से पहले दिखाई दे चुके थे। सन 1914 से वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे। बनारसी दास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। विशाल भारत छोड़ने के बाद बनारसी दास ने टीकमगढ़ से मधुकर का संपादन शुरू किया। ओरछा नरेश इनका विशेष आदत करते थे और हिंदी प्रेमी भी थे। बनारसी दास के बारे में कहा जाता है कि वे वास्तव में जीवन भर पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं उन्होंने किया, और उनका अध्ययन जो था वो हिंदी संस्कृत भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया था। उनकी अपनी शैली थी जो बातचीत की भाषा के निकट होते हुए भी ओजपूर्ण और प्रांजल है और आकर्षक भी रही। निबंध की बात की जाए या फिर रेखा चित्र की, वर्णन उनके लिए एक लेख शैली विशेष रूप से उपयुक्त है, और उनकी रचनाओं में रेखा चित्र, साहित्य और जीवन, सत्यनारायण कवि रत्न, भारत भक्त, एंड्रयूज और संस्मरण आदि काफी प्रसिद्ध भी हुए।
1: सो फॉर टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग के पुष्पनाथ द ऑथर। We know him for his contributions to detective fiction writing in Malayalam. So he has been rightly called the father of Malayalam fiction. He incorporated ideologies and supernatural elements creatively in horror story writing. And he primarily focused on plausible crime stories that motivated readers to become detectives themselves and then solve the mysteries. In 1968, he released his first novel, which was Chuvanna Manushyan. This is a scientific thriller, and then went on to write over 350 works, and this includes mainstream novels, also includes science fiction and horror fiction during the 1970s and 1980s.
0: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स को। उनका पूरा नाम था विल्सन लायनल गार्टन जोन्स, और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम खिलाड़ी रहे जिन्होंने बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप मुकाबला जीता। उन्होंने 1958 और 1962 में दो बार विश्व चैंपियनशिप जीती। इन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री, 1990 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। दो बार विश्व चैंपियन रहे विल्सन जोन्स 12 बार बिलियर्ड्स के राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे और 5 बार स्नूकर के राष्ट्रीय चैंपियन रहे।
1: सो टुडे लिसनर्स वी आर आल्सो रिमेंबरिंग पंडित वसंतराव देशपांडे, द रिनाउंड इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट, अ ग्रेट परफॉर्मर ऑफ मराठी नाट्य संगीत। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे ही लर्न फ्रॉम सेवरल गुरुज and he thereby refused to tie himself down to a single school of schooling. He started his musical training in his hometown Nagpur, and then he also followed Suresh Babu Mane of Kirana Gharana. The most important influence on him was Dinanath Mangeshkar. So Vasantrao was the sole true inheritor of Dinanath's mercurial style of singing. And well, it is important to mention here that his renditions of rags such as Marwa and Natbhairav, Kaus, Shri Kalavati, and they had a quality to them that kept people interested. So without further ado, let's listen to his voice.

और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद हेमचंद्र गोस्वामी ने। इन्होंने 1920 में तेजपुर में आयोजित असम साहित्य सभा के चौथे अध्यक्ष के

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान
1: को दीजिए यही कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: We diversified our sources.
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए।

0: सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे इस संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिऊ हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के

0: सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले तीन दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: 100.1 FM கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी

0: कोल्लम जिले के अराकुलम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीदी नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य भर के विद्यार्थियों को सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। श्री ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया। फ्रांस समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ते हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सेंस में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चाउ तीन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने च्यू हिंगसांग चे और वांग चीलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चू यू को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. The re-polling has started in 15 booths in two constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. Among these, 11 are Paschim Magarhat and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered re-polling.
0: Paris Pratyogita mein bhaag le raha hai. Under 17 Rashtriya team match Bharatiya samay anusar sham 5 baje shuru hoga. Iske saath hi samachar bulletin samapt hua.
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The re-polling has started in 15 booths in two constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. Among these, 11 are Paschim Magarhat and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered re-polling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier. as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased

0: by 60%.
1: We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%. We are incentivizing the movement to natural gas. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz.
0: The Reserve Bank of India has said that 98.47% of the 2000 rupee denomination bank notes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2000 rupee notes from circulation on May 19, 2023 as part of its currency management exercise. The RBI, however, clarified that despite their withdrawal and return, the 2000 rupee bank notes continue to remain legal tender. The US blockade in the Gulf of Oman and maritime routes has been costing Iran nearly $4.8 billion in oil revenue, according to a report by Axios, citing Pentagon. Highlighting the report, Sean Parnell, assistant to the Secretary of War for Public Affairs, said the US operation is intended to maintain sustained economic pressure on Tehran. Prime Minister Narendra Modi has expressed concern over the health of Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai. In a social media post, the Prime Minister said that he wished Mr. Rai speedy recovery after reports of his illness surfaced. The Meteorological Department has said Jammu and Kashmir is likely to witness generally cloudy sky with spells of light to moderate rainfall and thundershowers next 3 days, accompanied by gusty winds of 40 to 50 km per hour at a few locations. The weather agency also issued an advisory asking farmers to suspend farm operations during the period. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level as the Under-17 national team kick off their campaign against Australia in China today. The match is scheduled to start at 5 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और टेनिस में मैड्रिड ओपन के फाइनल एकल महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुसुक से होगा अब समाचार विस्तार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता एक रिपोर्ट
3: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया जवाब में हिजबुल्ला इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं समाचार कक्ष से कृष्णकांत
2: अमेरिका द्वारा ओमान की खाड़ी और समुद्री मार्गों पर लगाई गई नाकाबंदी के कारण ईरान को तेल राजस्व में लगभग 4 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है ये दावा पेंटागन के हवाले से एक्सियोस की एक रिपोर्ट में किया गया है अमेरिका के रक्षा विभाग के सहायक सचिव सीन पार्नेल ने कहा कि यह अभियान ईरान पर लगातार आर्थिक दबाव बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है

0: उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य निर्माताओं को अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करना है। ईरान पर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी न लेने के अपने फैसले का भी बचाव किया और कहा कि इस तरह की मंजूरी पहले कभी नहीं मांगी गई और इसे व्यापक रूप से पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाता है। टैरिफ बढ़ जाने से अमेरिका और यूरोपीय संघ के व्यापार में तनाव बढ़ गया है। समाचार एजेंसी CBS न्यूज के अनुसार ट्रंप प्रशासन जर्मनी से 5,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। इसे ईरान से जुड़े अमरीकी सैन्य अभियानों को लेकर अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो सहयोगियों की और विशेष रूप से कहा कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य के एक क्षेत्र में नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता में कटौती के बारे में चिंतित हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि संघर्ष के बीच रूस को अपने तेल क्षेत्र पर प्रतिबंधों और लक्षित हमलों के परिणाम स्वरूप 2026 में अब तक 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के प्रतिबंध रूस के तेल राजस्व को कम करने और उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ाने पर रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि संघर्ष के बीच रूस को अपने तेल क्षेत्र पर प्रतिबंधों और लक्षित हमलों के परिणाम स्वरूप 2026 में अब तक 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के प्रतिबंध रूस के तेल राजस्व को कम करने और उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि रूस के तेल उद्योग में व्यवधान के कारण उसकी परिचालन क्षमता काफी प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन और कर्मियों के लिए स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से एक सैन्य सुधार शुरू करने की भी घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। श्री गोयल ने बताया कि रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार से ठोस लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि UAE से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत का विदेशी निवेश दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों को और भी सुदृढ़ करता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलते स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग से ईरान से बाहर निकाला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा।

एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब से अधिक हो गया है। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ஒலித்த அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்கிறது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லி நிகம். पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: We diversified our sources.
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ

अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के एक साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். நேர்கள் எமது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நியூஸ் ஆன் ஏர் மொபைல் ஆப்பில் கேட்டு மகிழலாம். 100.1 எஃப்எம் கோல்டில் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मी का चयन कर सकता है। अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद
1: मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल
1: पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड पेनिनसुला इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू डेज एंड इन आईपीएल क्रिकेट चेन्नई सुपर किंग्स टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस दिस इवनिंग एंड विद दैट वी एंड द मिडडे न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी

0: की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश।

0: जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक

0: तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगराहट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हुई थी। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सवेरे 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज से 4 दिन के दौरे पर म्यांमार में हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के कमांडर इन चीफ जनरल ये विन ऊ, रक्षा मंत्री जनरल यू टून आंग और म्यांमार सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में एक बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। In Chhattisgarh, 3 security personnel lost their lives and 1 personnel was injured in an IED blast near the Kanked Narayanpur district border today. The incident occurred while personnel of the District Reserve Guard were on an operation to defuse an improvised explosive device. According to police, a DRG team had been employed for demining, area domination and search operations.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முனீஷ் ஷர்மா. सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है. हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता.
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है. आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

दो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और एक पद EWS वर्ग के लिए तथा दो पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं। सहायक प्राध्यापक के कुल 28 पद हैं, जिनमें से 11 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जबकि EWS वर्ग के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित हैं।

0: ISHD बांद्रा पश्चिम रिक्लेमेशन मुंबई। सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावित तिथि है 7 मई 2026। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ पदों के लिए सीधा साक्षात्कार अहमदाबाद गुजरात में लिया जाएगा और उसके लिए तिथि 8 मई 2026 है। दस्तावेजों का सत्यापन प्रातः 9:30 से 11:30 के बीच होगा और सीधे साक्षात्कार का समय रहेगा सवेरे 11:30 से 5:30 बजे तक। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखिए वेबसाइट AYGNISHD.NIC.IN। ईमेल का पता रहेगा AYGNIHH-MUM@NIC.IN। दूरभाष पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष नंबर है 02269102100। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन संलग्न कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक के पदों को भरने के लिए पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, पदों का विवरण, पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए अनुसंधान विभाग की वेबसाइट dhr.gov.in/vacancies। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन
2: प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। Mukesh, it was Buddha Purnima yesterday, and this year it was an even special one, as for the first time the sacred relics of Gautam Buddha, which are usually housed at the National Museum in here in Delhi, has been brought to Ladakh for public viewing. And in the land of high passes in Ladakh, where the mountains seem to touch you and are quieter than the rest of the country, the sacred exposition of the holy relics of Gautam Buddha has brought with it a different kind of stillness, offering a rare opportunity for pilgrims, monks and locals to pay homage. The event has been described as a major, deeply spiritual occasion for the region's people to connect with the teachings of Lord Buddha. Devotees and tourists can in this season now pay their respects, and this will certainly spiritually be an enriching experience for all the visitors. So why not make a plan to visit Ladakh this season, Mukesh? Escaping the sweltering heat of the cities down here. है ना? तो ये सब तो हुई information वाली बातें, and shall we begin with the news headlines now?
1: बिल्कुल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप।

0: से इनकार कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार
1: Re-polling underway at 15 booths of two assembly constituencies of West Bengal. Over 55% voter turnout reported till 1 p.m.
0: Lok Sabha adhyaksh ne varsh 2026-27 ke liye char sansadiya samitiyon ka punargathan kiya.
1: India and Nepal discuss flood forecasting model ahead of the upcoming monsoon season.
0: Mausam vibhag ka agle 2 din purvottar aur desh ke pradyupik hisson mein tez varsha ka anuman.
1: And in IPL cricket, Chennai Super Kings to take on Mumbai Indians this evening. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Mukesh, today we will talk about World Tuna Day. Today's broadcast marks a globally significant occasion. It's May the 2nd. Celebrated worldwide as World Tuna Day. It serves as a call to action to protect tuna populations, with 33.3% of the 7 main tuna species previously fished at sustainable levels. Now, you might be wondering, why tuna? So, of all the species in the ocean, why dedicate an entire international day to this one fish? Stay with us as we dive deep into the story of tuna, its journey in the ocean, its incredible nutritional value, the environmental challenges it faces, and the inspiring global efforts working to secure its future. So, tuna are among the ocean's most remarkable creatures. Built for speed and endurance, these powerful fish can swim across entire oceans, maintaining warm body temperatures even in cold waters, a rare trait among fish. There are several species of tuna, including skipjack, yellowfin, albacore, and the prized bluefin. Each plays a vital role in marine ecosystems and global fisheries. Tuna is not just a fish, it's a global commodity, a cultural staple, and for many communities, it's a lifeline.
0: बिल्कुल, टूना एक मुख्य भोजन भी है और आपकी प्लेट पर जब टूना पोषक तत्वों का खजाना होती है तो आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. आइए इसे आपके घर, आपकी रसोई के और करीब लाते हैं. चाहे वो कोई झटपट बनाने वाला सैंडविच हो, सलाद हो या किसी खाने का हिस्सा हो, ट्यूना दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछलियों में से एक है. और ये सिर्फ बनाने में आसान नहीं है बल्कि ये बेहद पौष्टिक भी है. और यहाँ बताया गया है कि पोषण विशेषज्ञ अक्सर ट्यूना खाने की सलाह क्यों देते हैं. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है. ये सेहतमंद फैट सूजन कम करने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं. इसके अलावा बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर होता है. ट्यूना सभी जरूरी अमीनो एसिड देता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास के लिए बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा विटामिन B12 का ये खजाना है. ये ऊर्जा बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. और साथ ही खनिजों से ये भरपूर है. इसमें सेलेनियम भी शामिल है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है. और आयोडीन भी है जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है.
1: And for people seeking affordable, high-protein diets, canned tuna has become a reliable and accessible option worldwide. But as demand grew, so did the pressure on tuna populations. And a few decades ago, the popularity of tuna came at a cost. With rising global demand, fishing fleets expanded rapidly. And in many parts of the world, weak regulations and fragmented management led to its overfishing. Some tuna stocks began to decline at alarming rates. By 2017, only about 75% of tuna catches came from sustainable, healthy stocks, and the rest were under serious pressure. The situation raised urgent questions. Could tuna disappear from our oceans? Could the entire fishing communities lose their livelihoods?
0: लेकिन अभी उम्मीद बाकी है. यहीं से कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है. जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ट्यूना दिवस की शुरुआत की थी तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि एक कार्रवाई के लिए एक पुकार थी. सरकारें, वैज्ञानिक और मछुआरे सभी पहले कभी ना देखे गए अंदाज में एक साथ आए. खाद्य और कृषि संगठन जैसे संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों के बीच तालमेल बनाया. ट्यूना मछली के प्रबंधन से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा.
1: Now let us now talk about a global turnaround story. The results of

0: Right, some there are some more practices, and these include the further mentioned measures like reducing bycatch. And now, what is bycatch? When unintended species like turtles, sharks, seabirds, and whales get caught, it has long been a major issue. Innovations also include like circle hooks that reduce turtle capture, bird scaring lines to protect seabirds like albatrosses, modified nets that allow non-target species to escape. And of course, there are eco-friendly practices also. Fishing gear and techniques are being redesigned to minimize damage to marine habitats and ecosystems.
1: जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये ज्ञान के बारे में भी है। खाद्य और कृषि संगठन का कॉमन ओशंस ट्यूना प्रोजेक्ट इन चीजों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा सस्टेनेबल तरीकों पर ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनकी ट्यूना मछली कहां से आई है। इसका लक्ष्य क्या है? 2027 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से ट्यूना मछली पकड़ना।
0: डिस्पाइट ऑल दीज प्रोग्रेस, न्यू चैलेंजेस आर ऑल्सो इमर्जिंग लाइक क्लाइमेट चेंज। Warming oceans are altering tuna migration patterns. Fish are moving farther offshore, increasing the cost for fishers and threatening coastal livelihoods, especially in developing regions. And then there are threats to marine wildlife. Many species, particularly seabirds like albatrosses, remain at risk due to accidental capture. And if we talk about the global governance, a major milestone came with the BBNJ agreement, which entered into force in 2026. And this agreement strengthens protection for marine biodiversity in international waters.
1: तरीकों पर e-learning course तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनकी ट्यूना मछली कहां से आई है। इसका लक्ष्य क्या है? 2027 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से ट्यूना मछली पकड़ना।
0: डिस्पाइट ऑल दीज प्रोग्रेस, न्यू चैलेंजेस आर ऑल्सो इमर्जिंग लाइक क्लाइमेट चेंज। वार्मिंग ओशंस आर ऑल्टरिंग ट्यूना माइग्रेशन पैटर्न्स। फिश आर मूविंग फार्दर ऑफशोर, इंक्रीजिंग द कॉस्ट फॉर फिशर्स एंड थ्रेटनिंग कोस्टल लाइवलीहुड्स, स्पेशली इन डेवलपिंग रीजन्स। And then there are threats to marine wildlife. Many species, particularly seabirds like albatrosses, remain at risk due to accidental capture. And if we talk about the global governance, a major milestone came with the BBNJ agreement, which entered into force in 2026. And this agreement strengthens protection for marine biodiversity in international waters. But agreements are only as strong as their implementation.
1: बिल्कुल अनुजा, अब हो सकता है कि हमारे श्रोता सोच रहे हों कि इन सब में उनकी या हमारी क्या भूमिका हो सकती है। असल में हमारी भूमिका काफी बड़ी है। यहाँ कुछ काम आसान दिए गए हैं। टिकाऊ स्रोतों से मिली ट्यूना मछली चुनें और इको लेबल देखें। इसके अलावा बहुत ज्यादा उपभोग से बचें, अपने सी फूड विकल्पों में संतुलन बनाए रखें। इसके साथ ही जानकारी रखें और जागरूकता फैलाएं और समुद्र संरक्षण की दिशा में काम करने वाली नीतियों और संगठनों का समर्थन करें। आप जो भी चीज खरीदते हैं उससे बाजार को एक संकेत मिलता है।
0: Absolutely. The story of tuna is a story of both warning and hope, and it reminds us how quickly natural resources can decline, but also how powerful collective action can be. From struggling stocks to a 99% sustainability rate, the journey of tuna shows that change is possible when science, policy, and people come together. So today, on World Tuna Day, let's celebrate progress, but remain vigilant, because the future of tuna is ultimately in our hands.
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो अनुजा, सबसे पहले श्रोताओं को ओडिशा ले चलें।
0: Right, Mukesh, and the census process has already started in Odisha, marking an important step towards a fully digital population survey in India. As part of Census 2027, the first phase, called the House Listing and Housing Census, is now being carried out in all 30 districts of the state. And we have a report on this.
2: The first phase is taking place from mid-April to mid-May. It focuses on collecting information about households such as housing conditions, basic facilities and ownership details. For the first time, people can

0: days and detained in Nabarangpur sub jail.
1: In the jail, he fell severely ill due to the unhygienic living conditions and lack of medical care in the prison. He was shifted to Korapur District Jail and later on admitted to the hospital. Kadraka Mangala died in the hospital on the 2nd of May 1945. We salute the great Indian.
0: We also remember nationalist Santa Singh, who was martyred on the 2nd of May 1925. A resident of Lahore, Santa Singh participated twice in the Shahidi Jathas to Jaito Gurudwara Gangsar Nabha in 1924-25 against the British order prohibiting all prayer assemblies there.
1: When the Jatha reached the Gurudwara, Wilson Johnston, the administrator of Nabha, ordered the troops to stop the Jatha and arrest its participants. The British-led troops stopped it and arrested a large number of its members. With others, Santa Singh was also arrested and tortured to death on the 2nd of May 1925 in jail. We salute the great martyr.
0: We also remember Indian National Army Lieutenant Kapoor Singh. A resident of Punjab, he participated in the war against the British troops on the Burmese front. He was killed in action on the 2nd of May 1944. Kapoor Singh was posthumously awarded the medals of Veer Hind and Shatrunash by Netaji Subhash Chandra Bose. We salute this great son of the soil.
2: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसीदास चतुर्वेदी को. उनकी गणना अग्रगणी पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है. हालांकि हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखन की अभिरुचि के लक्षण उनमें पत्रकार बनने से पहले ही दिखाई दे चुके थे. सन 1914 से ही वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे थे. बनारसीदास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया.
3: And today we also remember on her death anniversary, Padmaja Naidu, who was a prominent Indian freedom fighter, political leader and administrator who played an important role in India's national movement and post-independence public life. She was born on 21st of November 1900 and was the daughter of the famous poet and nationalist leader Sarojini Naidu. Inspired by her mother and Mahatma Gandhi, Padmaja Naidu joined the Indian freedom struggle at a very young age. She passed away on this day in 1975 and is remembered as a fearless freedom fighter, capable administrator and a graceful leader who carried forward the legacy of service, patriotism and women's leadership in modern India.
2: और अब हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी यशवंत सिंह परमार को. वे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे और उन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और विकास की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. लगभग तीन दशकों तक कुशल प्रशासक के रूप में जन जन की भावनाओं संवेदनाओं को समझते हुए उन्होंने प्रगति के पथ पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए नई दिशाएं पेश की. उन्होंने अपना सारा जीवन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया. वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे.
3: And today we also pay tribute to Hemchandra Goswami, who was an influential Assamese intellectual renowned as a writer, poet, historian, teacher and linguist who significantly shaped modern Assamese literature and language during the Janaki era. He emerged as one of the Trimurti of early modern Assamese literature alongside Lakshminath Bezbarua and Chandra Kumar Agarwal, contributing to the revival and standardization of Assamese as a distinct literary medium. His multifaceted work bridged traditional Vaishnavite scholarship with colonial era reforms while advocating for Assamese identity against Bengali dominance.
2: और अब हम याद कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के विश्व के महानतम फिल्मी हस्तियों में शामिल सत्यजीत रे को. उन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की. सत्यजीत रे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद करते थे. इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल थे. फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे. सत्यजीत रे कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे. सत्यजीत रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया. इनमें फीचर फिल्में,

0: और विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: The iconic film Shatranj Ke Khiladi is based on a short story by the legendary Munshi Premchand. Satyajit Ray masterfully expanded the narrative, blending it with the political turmoil of 1856. In this movie, he directed this movie, and let's hear a dialogue from this picture. Sheh.
2: Mirza Sajjad Ali Sheh de rahe. Yahi hai Safed Fauj ke Badshah, aur in par Lal Wazir hamla karne ki taak mein hai. Mir sahab, Badshah bachaiye. बादशाह गया तो खेल खत्म।
0: तो श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
3: நேரம் 5 மணி, ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.
4: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
3: அரங்கிசை. இந்த நிகழ்ச்சியில் உமா வெங்கடகிருஷ்ணன் அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். ஜெயந்தி கேசவ் அவர்கள் வயலின், ஜி கே கணேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம். நீ பாதமே கதி, நளினகாந்தி ராகம், ரூபகதாளம், ஜி என் பாலசுப்ரமணியம் கிருதி.

0: बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन काम करेगा श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है, जहां हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज शनिवार है और आज हम आपके फ़ोन कॉल भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाज़ार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से

प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक इस सप्ताह मामूली बढ़त में रहे। अप्रैल के महीने में कुल 7% का उछाल दर्ज हुआ। मजबूत कॉरपोरेट आमदनी से निवेशक उत्साहित। प्रमुख अमरीकी शेयर सूचकांकों में रिकॉर्ड तेजी बनी रही और इस सप्ताह कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों में आया उछाल।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. मुंबई से अमित है हमारे साथ. आपका स्वागत है, सवाल पूछें.
2: थैंक यू मैडम. मैडम मेरे दो सवाल है एक्सपर्ट से कि क्या जरूरी है कि सपोज 12 लाख से कम यदि सीनियर सिटीजंस का इनकम है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्या? और नंबर दूसरा है कि सवाल था कि सपोज 12 लाख के आगे यदि इनकम जाता है 12 लाख 100 रुपए तो उसके ऊपर टोटल टैक्स कितना हो सकता है? थैंक यू.
3: चलिए अमित, आपका पहला सवाल है कि अगर 12 लाख से कम है तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए फाइल करना जरूरी है? देखिए ये डिपेंड करता है. मान लीजिए उनका कोई टीडीएस कटा हुआ है टैक्स सेट सोर्स तो फिर तो फाइल करना होता है, पर अमूमन 12 लाख से कम पर फाइल नहीं. पर हम लोग असूलतन क्या करते हैं कि जिन लोगों को रिबेट मिल रहा है 12 लाख का उनको टिपिकली रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि किसी भी साल में आपका एक्सीड भी कर सकता है. तो होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि दो साल फाइल किया, एक साल नहीं फाइल किया, फिर उसके बाद अगले साल फाइल किया, तो कई बार आयकर विभाग से नोटिस आता है कि आपने पिछले साल का क्यों नहीं फाइल किया, फिर आपको पुराने रिकॉर्ड्स खोल के बताना पड़ेगा इसलिए नहीं फाइल किया. तो अगर कॉन्टिन्यूटी बनी रहे
0: इट्स एडवाइजेबल.
2: उसके ऊपर टोटल टैक्स कितना हो सकता है? थैंक यू.
3: चलिए अमित, आपका पहला सवाल है कि अगर 12 लाख से कम है तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए फाइल करना जरूरी है? देखिए ये डिपेंड करता है. मान लीजिए उनका कोई टीडीएस कटा हुआ है टैक्स सेट सोर्स तो फिर तो फाइल करना होता है, पर अमूमन 12 लाख से कम पर फाइल नहीं. पर हम लोग असूलतन क्या करते हैं कि जिन लोगों को रिबेट मिल रहा है 12 लाख का उनको टिपिकली रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि किसी भी साल में आपका एक्सीड भी कर सकता है. तो होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि दो साल फाइल किया, एक साल नहीं फाइल किया, फिर उसके बाद अगले साल फाइल किया, तो कई बार आयकर विभाग से नोटिस आता है कि आपने पिछले साल का क्यों नहीं फाइल किया, फिर आपको पुराने रिकॉर्ड्स खोल के बताना पड़ेगा इसलिए नहीं फाइल किया. तो अगर कॉन्टिन्यूटी बनी रहे
0: इट्स एडवाइजेबल.
3: हाँ, तो ऐसा एडवाइजेबल है. दूसरा आपने पूछा कि अगर 12 लाख 100 रुपए है तो देखिए 12 लाख का पहले आप रिबेट लेंगे. रिबेट लेने के बाद आप देखेंगे कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं. आपको पता होगा स्लैब 5, 10, 15, 20 अब जो न्यू रेजीम की मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर ऐसा मेरा मानना है राजेश सोनू के इस बार करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग न्यू रेजीम में आ जाएंगे क्योंकि ये 12 लाख की वजह से वो इतनी लुभावनी हो गई है. तो उसमें जिस भी स्लैब में होंगे हमें तो उस स्लैब के हिसाब से वो अपने बाकी के बचे हुए 100 रुपए पर वो टैक्स दे देंगे. जी.
0: Joining us now from Jaipur is Jitendra. A warm welcome, Jitendra.
4: हाँ, जैसे ये एक बात बताइए, जैसे कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा, फ्लैट और लैंड दोनों पकड़ लीजिए, रियल इस्टेट में तो दोनों आएगा
3: जी,
4: तो और लंबे समय के लिए
3: जी,
4: क्योंकि रहने के लिए तो घर है आदमी के पास
3: जी,
4: तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट का फायदा है या रियल इस्टेट में या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए, अगर सिस्टमेटिक एकदम से जो उसका ईएमआई आएगा वही अगर निफ्टी 50 में लगाते जाए तो कोई हेडेक भी नहीं है, क्या आप सोचते हैं सर?
3: देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपका निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि आपका तीसरा एसेट क्लास बिल्कुल ही भिन्न है इन दोनों से. तो निफ्टी 50 आपको जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं उनके अंदर निवेश करने का अवसर देता है और बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हैं. तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जब कोविड आया था तो निफ्टी लगभग 7,500 पे आ गया था. आज जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास है. तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ होती है, उनके प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर जाता है. ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल बाद निफ्टी नीचे आया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है. तो इसलिए निफ्टी 50 अच्छा है. म्यूचुअल फंड्स भी लंबे वक्त के लिए अच्छा है, पर आप SIP के माध्यम से आए तो ज्यादा अच्छा है. मैंने SIP मुझसे बहुत
1: लंबा वक्त आप कह रहे हैं करीब
3: ये तो खुद ही 10 साल कह रहे हैं, बिल्कुल 10 साल.

0: मुझे लगता है कि 10 साल से कम का नजरिया नहीं रखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, SIP में, म्यूचुअल फंड में करते हैं, फिर 1-2 साल बाद NAV नीचे आती है। तो मैंने तो SIP को एक नया नाम दिया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो उसको कहते हैं, मैं उसको सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कहता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो
1: जी
0: फिर आपको SIP नहीं करना चाहिए। अब आपका जो पहला पोर्शन था जितेंद्र, वो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आपने कहा कि रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट का जो निवेश है बहुत सब्जेक्टिव होता है कि आपको, आप अपार्टमेंट में कर रहे हैं, आप किसी घर में कर रहे हैं, आप लैंड में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल वेयर हाउस में कर रहे हैं। तो ये जनरलाइज करके जितेंद्र नहीं बताया जा सकता। आप, हालांकि मैं रियल एस्टेट पर बहुत बोलता हूं और मुझे रियल एस्टेट की काफी जानकारी है, तो कौन सा शहर है, किस प्रकार का एसेट है, वो उसकी ROI, मतलब वहां पर ग्रोथ पीछे कैसे रही है, मैं जनरली सलाह देता हूँ रियल एस्टेट वालों को। आजकल एक नया तरीका मुझे मिला, क्योंकि रियल एस्टेट पे इतने सवाल आते थे, अपार्टमेंट लें, दुकान लें, कोठी बना के उसको रखें लंबे वक्त के लिए, उसको किराए पे दे दें। तो मुझे लगता है जिस तरफ, जितेंद्र ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जिस तरफ शहर चल रहा हो, शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जाते हैं, अरे 3 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, आज देखो यहाँ मॉल बन गया, मार्केट बन गई, अपार्टमेंट बन गए। तो जो शहर जिस तरफ चलता हो उसको प्लानिंग कहते हैं, जिस तरफ प्लानिंग चल रही हो उस तरफ लैंड लेके अगर आप उसको सिक्योरली रख सकते हैं तो वो अच्छा होता है। बाकी जितेंद्र, दोनों में सीधा कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। और अगर मैं एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना भी चाहूं तो मुझे उसके लिए स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा कि वो आपकी रियल एस्टेट कहां पर है, कौन डेवलपर है, अपार्टमेंट है, छोटा है, बड़ा है, और पेमेंट टर्म्स क्या थी, उस इलाके की सराउंडिंग्स कैसी हैं, तो इस सब पे आधारित हो सकता है। बाकी मैंने आपको म्यूचुअल फंड और निफ्टी का जरूर बताया, वो दोनों लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी बात है। रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा हमें और गहराई में आप ले जाएंगे बिना किसी डेवलपर का नाम लिए, तो मैं बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा, और बहुत कन्विंसिंग ऐसा मुझे लगता है कि मैं जवाब दे पाऊंगा अगर आप मुझे स्पेसिफिक्स बताएं तो।
1: और अब अगले कॉलर दिल्ली से अमित झा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
2: हेलो, नमस्कार सभी को।
3: जी
2: कोहली सर।
0: जी नमस्कार
2: सर। पिछले सप्ताह जो मैंने सवाल आपसे प्रश्न पूछा था, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं सर।
0: जी
2: मैंने डॉलर के बारे में मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम कोई भी क्षेत्रीय, जो भी मान लीजिए चीन है, जापान है या मलेशिया है,
0: जी
2: पहले हम एशिया देश की बात कर लेते हैं, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, लाइक मान लीजिए हम पाम ऑयल खरीदते हैं, मान लीजिए एक लीटर एग्जाम्पल 100 रुपए का 1 लीटर है, ठीक है सर, और हम बासमती राइस उनको निर्यात करते हैं मान लीजिए सर,
0: जी
2: तो 100 रुपए किलो बासमती राइस है, तो हम क्या करेंगे ना सर, गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए, अगर आप 1 किलो पाम ऑयल उधर से देते हैं तो उसको आप डॉलर में पेमेंट हमें मत कीजिए,
0: जी
2: पर ना ही हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे,
0: जी
2: आप हमसे 1 किलो बासमती राइस ले लीजिए, 1 किलो आप वो क्या कहते हैं पाम ऑयल ले दीजिए, बराबर हिसाब हो गया,
0: जी
2: ना हमें डॉलर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ी। पहली बात। दूसरे सवाल सर, दूसरा सवाल ये सर कि जो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे जो दबाव था मार्जिन को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए 70 डॉलर से लेके 120 डॉलर के बाद उन्होंने जो इंपोर्ट करना शुरू किया सर,
0: जी
2: तो हाल ही दिनों में कल जो बढ़ोतरी हुई है,
0: जी
2: तो क्या उन कंपनियों के मार्जिन पे अब थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले रखी है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। धन्यवाद सर।
0: देखिए अमित, आपका पहला सवाल जो है वो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें क्या होता था कि आप बदले में, सामान के बदले, जब जब करेंसी किसी जमाने में नहीं हुआ करती थी, एक सामान लिया जाता था, एक दिया जाता था। आजकल के जमाने में अमित इसको संभव नहीं, और इसलिए संभव, आपने जैसे इंडोनेशिया मलेशिया का एग्जाम्पल लेके भारत से ऑयल लें, हम उनको ये दें बासमती दें, अब उनको बासमती नहीं चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो मान लीजिए भारत के पास है ही नहीं, या हमें उनसे ऑयल नहीं, हमें कुकिंग ऑयल नहीं, हमें कुछ और चाहिए, तो बार्टर। और दूसरा, वैल्यू टू वैल्यू उसको अलाइन करना भी अमित बहुत कठिन है। आप ये तो छोड़िए, मैं राजेश और सोनू के इजाजत से एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भारत और रशिया ने जब रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया तो ऐसा हुआ कि, क्योंकि अभी भारतीय रुपया 18-20 कंट्रीज में चल रहा है, उनके पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अब हम इन रुपए का क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे हो, ये तो बाकी जगह तो चलते नहीं है, तो आप तो बहुत इसको अलाइन करना आजकल के युग में बहुत कठिन है, और डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड मेजर किया जाता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आपके आपका आपकी आवाज, मैं उम्मीद करता हूं बहुत आपकी आवाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक भी पहुंच रही होगी, हो सकता है आपके सुझाव का कोई संज्ञान लेके ऐसा कुछ कर पाए। ऐसा करिए ना अमित, पहले आप किसी दुकान पे इसको, हम यहीं पर ट्राई करते हैं कि जैसे आप दुकान पे कुछ लेने गए तो आपने रुपए की जगह उनको कोई सामान बोलिए कि ये ले लें, तो बहुत कठिन है आजकल के जमाने में, बहुत कठिन है। आपने दूसरा पूछा OMCs का, बिल्कुल देखिए, कीमत बढ़ाने का जो कमर्शियल सिलेंडर पे कीमत बढ़ाने की घोषणा हुई है, इसीलिए की गई है क्योंकि उनके जो मार्जिन थे वो बहुत प्रेशर में थे, तो कुछ

0: लंच होटल में होता है,
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: ऐसे लोगों के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसके लिए आपकी क्या राय है? ये बढ़ोतरी ऐसी हो जाएगी तो कैसा आदमी कर सकता है? और दूसरा सवाल है कि ऐसे हालत में आगे की रणनीति, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने ये जो नेक्स्ट वीक में कैसा शेयर मार्केट का प्रोग्रेस रहेगा?
1: देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स पे रेट बढ़ाया गया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो ठीक है कि रेस्टोरेंट्स हो गए, केटरर्स हो गए, क्लाउड किचन्स हो गई, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, उन सब की कॉस्ट बढ़ेगी. पर ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है कि काफ़ी इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर था, बल्कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ सिलेंडर पैकिंग कंपनीज लॉस में भी थी, तो उस लॉस को किसी तरह रिकवर करने की कोशिश की. क्योंकि मुझे ये भी नज़र आता है कि कुछ डोमेस्टिक सिलेंडर, क्योंकि आम आदमी को प्रभावित करता है, तो कुछ उसका लोड भी शायद कमर्शियल पर डाल रहा है. बिल्कुल, देखिए एक वैश्विक समस्या है, इस सबसे हम सबको मिलकर जूझना पड़ेगा. और मुझे लगता है सरकारी तंत्र से भी यही आती है कि एक ऐसी परिस्थिति है जो असाधारण है. दूसरा, आपने पूछा अगले हफ्ते मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी. मार्केट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर बनाए हुए, मार्केट क्रूड ऑयल पर नजर बनाए हुए, मार्केट जो है रुपए और डॉलर पर नजर बनाए हुए, और मार्केट FII सेलिंग पर बनाए हुए. और आजकल तो मार्केट ने अभी देखा आपने, बीच बीच में उठती भी है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर फोर के और एनुअल, उस पर भी नजर बनाए हुए. तो ये सब फैक्टर्स रत्नाकर जी कंट्रीब्यूट करेंगे. इस समय इतनी अनिश्चितता मार्केट में फैली हुई है कि कुछ भी लंबे क्या मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है. वी आर जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक एक दिन हम करके मार्केट में ले रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है. तो आप समझ रहे हैं, आप तो बहुत वेटरन है, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, मुझे लगता है आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ पाएगा.
2: आपने बात की मार्केट की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह सेंसेक्स में कैसा प्रदर्शन रहा. कल अवकाश के कारण चार दिन के कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. अमरीका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति ना होने, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बने रहने, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली जारी रहने और यूएस फेडरल रिजर्व का रुख कड़ा रहने के बीच निवेशकों की धारणा सतर्क बनी रही. सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.3% की वृद्धि से
1: और एनुअल, उस पर भी नजर बनाए हुए. तो ये सब फैक्टर्स रत्नाकर जी कंट्रीब्यूट करेंगे. इस समय इतनी अनिश्चितता मार्केट में फैली हुई है कि कुछ भी लंबे क्या मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है. वी आर जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक एक दिन हम करके मार्केट में ले रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है. तो आप समझ रहे हैं, आप तो बहुत वेटरन है, आप बहुत तजुर्बेकार हैं, मुझे लगता है आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ पाएगा.
2: आपने बात की मार्केट की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह सेंसेक्स में कैसा प्रदर्शन रहा. कल अवकाश के कारण चार दिन के कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. अमरीका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति ना होने, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बने रहने, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली जारी रहने और यूएस फेडरल रिजर्व का रुख कड़ा रहने के बीच निवेशकों की धारणा सतर्क बनी रही. सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.3% की वृद्धि से 250 अंक बढ़कर 76,914 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 0.4% की तेजी से 100 अंक बढ़कर 23,998 पर दर्ज हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में प्रदर्शन और भी बेहतर था. इस सप्ताह के दौरान मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% बढ़ गया और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 2.5% का उछाल आया. मासिक आधार पर बात करें तो मार्च के महीने में आई तीव्र गिरावट से अप्रैल के दौरान आंशिक रूप से उभरते हुए निफ्टी में 7.5% का उछाल आया और सेंसेक्स में 6.9% की वृद्धि दर्ज हुई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 66 पैसे की कमजोरी दर्ज करता हुआ 94.91 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ. आप पहले ही कह चुके हैं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, और लेट्स होप कि जो अप्रैल में उछाल आया है उसी का अनुसरण शायद
1: जी वो जारी रहे, उम्मीद तो यही करते हैं.
2: और अब दिल्ली से लेते हैं अगले कॉलर. रवि, आपका स्वागत है, सवाल पूछें. रवि से हमारा संपर्क टूट गया है.
3: सो व्हाट इज देयर इन द इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट दैट विल दैट कैन लिफ्ट कैन बी लिफ्टेड अप. The four reasons that we have given: progress in US-Iran talks, elevated crude oil prices, continued FII selling, and hawkish tone of the Federal Reserve. They all seem to be staying there. So

0: और बिल्कुल भी आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। एक बार को तो लगेगा, पर आप दूसरे दूसरे देश में जहां पर आप बाद में दे रहे हैं उसमें आप, तो अगर ये वहां के रेजिडेंट्स हैं तो जो भारत में टैक्स देंगे उसका ये यूएस में या जिस भी देश में है वहां पर उसका क्रेडिट ले सकते हैं। भारत और यूएस का भी डीटीए है, मुझे नहीं पता कौन से देश में है, जर्मनी की आपने बात करी, जर्मनी के साथ भी है, जर्मनी में उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं।
1: मूविंग ऑन दी

0: US as far as on economic parameters, Rajesh.
1: Or is it short-lived?
0: Yes, okay. Yes, you said it all in one word, because I think there is a couplet in Urdu, Dil Behlane Ko Ghalib Khayal Achha Hai. So I think the economic parameters do not seem to be favoring that. With a country which is in war, you know, cannot be celebrating in stock market. So I have a feeling that
2: and ye hamesha se dar tha ki unke margins hit honge companies ke, so maybe lagged effect ke sath shayad hame
0: haan wo lagged effect hai aapko jab ye yuddh samapt hoga kehte hain ki jab yuddh samapt hota hai to kya khoya kya paya वो बाद में पता लगता है. जब युद्ध चल रहा होता है तो इन द रश ऑफ ब्लड आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, ऐसा मुझे नजर आता है.
2: योगेश है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर. योगेश जी, सवाल पूछिए.
3: जी, मेरा सवाल ये है कि जिससे इंडिया में SIP को बहुत ज्यादा जोर शोर से बेचा जाता है इन्वेस्टर्स को, SIP कर दो भूल जाओ, SIP कर दो भूल जाओ,
0: जी.
3: तो क्या SIP बाहर देशों में भी SIP करी जाती है? क्या उसमें भी उसको SIP बोला जाता है?
0: देखिए योगेश, SIP स्वयं ही एक निवेश करने का तरीका है. इनफैक्ट मैं तो SIP का प्रयोग खाली म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो SIP का प्रयोग गोल्ड सिल्वर में निवेश करने के तरीके को बोलता हूँ, जैसे शेयर्स में भी. SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्ट. और मैंने तो SIP का एक नया नाम रखा, अभी मैं जिक्र कर रहा था, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आपको सब्र होना चाहिए. देखिए SIP का, बाकी देशों में भी SIP होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, SIP कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. SIP का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अलग अलग लेवल्स पे एंटर करें. तो ये तो हम किसी भी देश में कर सकते हैं, नाम भले कोई भी हो. तो SIP बाकी देशों में भी है, आपके सवाल का पहला जवाब. दूसरा, इसको इसलिए अग्रेसिवली बेचा जाता है कि यह हाल में बहुत ही कारगर तरीका निकला है, क्योंकि एक तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी इनकम से पैसा जाता रहता है तो आपको पता नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा करके. दूसरा यह कि लंबे वक्त के लिए जाता है, जो कि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा असूल है, जिसने
2: भी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी कन्वीनियंट
0: है. बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाइए आप 10 साल तक अगर लेके. और मैंने देखा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग SIP की बात कहता हूं संक्षेप में, कि 10 साल के लिए अगर आपने करी, देखिए 10 साल में कोविड भी आ गया, अगर मैं 2019 में घुसता, कोविड भी आ गया, ये युद्ध भी आ गया, सरकारें भी बदली, आपने सब कुछ अपने पेट में डाइजेस्ट कर लिया और मार्केट जो थी एक डायरेक्शन के हिसाब से चलती गई. तो इसलिए SIP योगेश अच्छा है, इसको किसी वजह से बेचा जाता है. तो SIP बाकी देशों में भी है, आपके सवाल का पहला जवाब. दूसरा, इसको इसलिए अग्रेसिवली बेचा जाता है कि यह हाल में बहुत ही कारगर तरीका निकला है, क्योंकि एक तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी इनकम से पैसा जाता रहता है तो आपको पता नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा करके. दूसरा, यह कि लंबे वक्त के लिए जाता है, जो कि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा असूल है, जिसने
2: भी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी कन्वीनियंट
0: है. बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाइए आप 10 साल तक अगर लेके. और मैंने देखा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग SIP की बात कहता हूं संक्षेप में, कि 10 साल के लिए अगर आपने करी, देखिए 10 साल में कोविड भी आ गया, अगर मैं 2019 में घुसता, कोविड भी आ गया, ये युद्ध भी आ गया, सरकारें भी बदली, आपने सब कुछ अपने पेट में डाइजेस्ट कर लिया और मार्केट जो थी एक डायरेक्शन के हिसाब से चलती गई. तो इसलिए SIP योगेश अच्छा है, इसको किसी वजह से बेचा जाता है. और आप भी अगर लंबे वक्त तक रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे.
2: और शहनाज हमारी अगली कॉलर है मुंबई से. शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे.
4: हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू.
0: जी, गुड इवनिंग.
2: जल्दी से पूछिए.
4: शरद जी, शरद जी, मेरा सवाल था, मैंने 26AF फाइनेंशियल ईयर 25-26 का चेक किया, तो विद द सरप्राइज मेरे 26AF में एक 18 लाख की कार रिफ्लेक्ट कर रही है.
0: हाँ,
4: और वो भी 18 लाख से मेरे पेन से दिया, मुझे मॉनेटरी कुछ लॉस नहीं है. ओवर एंड अबव दैट डीलर को भी 18,000 दिया है, कुछ 1% देना होगा, क्या देना होगा
0: जी.
4: इसके आगे मैंने डीलर को और इनकम टैक्स ग्रीवेंसेस में मेल डाला, लेकिन दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. आगे चल के मुझे क्या करना है, या तो कार क्लेम करूँ या तो यहाँ से उसको हटाऊं, कैसे, वो आप प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए. ये पर्पसली हुआ या बाय एक्सीडेंट, दैट विल लेट मी नो. अब मैं वॉल्यूम बढ़ा करती हूँ, उसके बाद आप बोलिए. थैंक यू सो मच, बाय टू ऑल.
0: अच्छा, देखिए AIS इज एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर द, मैंने इसका नया नाम रखा आईना, इसे समझिए, क्योंकि आपके पूरे ट्रांजैक्शन बता देता है. उसमें आ रहा है, तो उसमें शहनाज एक फीडबैक देने का ऑप्शन होता है. आप AIS खोलेंगे अपना लॉगिन करके पोर्टल पर, तो उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं, जहां पर अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं. पर आप कह रहे हैं आपने ट्रांजैक्शन किया है, TDS भी कटा है, तो वो तो वहां रिफ्लेक्ट होगा ही. अगर असल में आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो आप फीडबैक के जरिए वहां पर बता सकते हैं. और थोड़ा सा और समय होगा, अगली बार दिक्कत आएगी तो आप दोबारा पूछिएगा, हम इसको एड्रेस करेंगे.
1: Global crude oil prices declined yesterday after Iran sent its latest proposal to the United States to end the conflict. Later, US President Donald Trump told the media that he's not satisfied with the proposal. Meanwhile, Tehran has continued to restrict access to the Strait of Hormuz, while the US Navy is tightening controls on Iranian crude exports.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश

0: पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने IPL इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. In West Bengal, re-polling was held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Nearly 87% voter turnout was recorded till 5 p.m. Polling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around the counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security

இப்படி சூடு.

0: जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर फिर से मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान

0: भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे पुल अवसंरचना को मजबूत करने और मेट्रो रेल विद्युत प्रणालियों को उन्नत बनाने के लिए 895 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये मेट्रो रेल की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोलकाता मेट्रो रेलवे के उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए 671 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान वो तीनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली चर्चाओं में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहेंगे। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में 2 विकेट पर 59 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navneeta Adhikari. In West Bengal, repolling was held today across 15 booths in South 24 Parga.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29

0: मतपत्रों से शुरू होगी।
1: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं
2: और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है, जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि यह क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
3: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
4: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे

0: लगातार हो रहे हमलों के बीच उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही बातचीत जारी रहने की उम्मीद थी, उन्होंने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक स्थिरता उन लोगों की कार्रवाइयों पर निर्भर करती है जिन्होंने शत्रुता शुरू की थी। ईरान में मौजूदा स्थिति के बारे में श्री इलाही ने कहा कि हालात स्थिर बने हुए हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि उन्होंने मौजूदा स्थिति अस्थिरता को अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से जोड़ा। श्री इलाही ने भारत के साथ ईरान के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भी प्रकाश डाला और भारत को एक महान देश बताया जिसका ईरान बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जिसकी जड़ें शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक संबंधों में जुड़ी हुई हैं। श्री इलाही ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध, सहयोग और तालमेल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान द्वारा दी जाने वाली सुविधा इन संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी ईरान और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए हैं। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला और इसराइल के बीच मौजूदा युद्ध विराम के बावजूद झड़पें जारी हैं। इसराइल की सेना ने क्षेत्र के 9 गांवों के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी देने के कुछ समय बाद ये हमले किए। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उसने तटीय गांव बायद में एक घर में मौजूद इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमला किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनकी ये टिप्पणी पेंटागन द्वारा कल की गई उस घोषणा के बाद आई है जिस

0: में कहा गया था कि ईरान संघर्ष और व्यापारिक शुल्कों को लेकर बढ़ते तनाव के चलते अमरीका जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। श्री पेट्रियोसिस ने यूरोप से अपनी सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया और कहा कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। जर्मनी में अमरीकी सैन्य उपस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई और शीत युद्ध के दौरान 1960 के दशक में चरम पर पहुंच गई, जब सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए लाखों अमरीकी सैनिक यहां तैनात थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान वे तीनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी समिति ने पाकिस्तान द्वारा बच्चों और अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने एक सम्मेलन में पंजीकृत शरणार्थियों सहित अफगान नागरिकों के खिलाफ की गई पाकिस्तान की जबरन कार्रवाइयों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: समिति ने कहा कि पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य उन्हें उत्पीड़न, यातना या दुर्व्यवहार के बावजूद अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर करना था। समिति ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की गहन जांच की भी मांग की और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आह्वान किया। समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी सहित कार्यकर्ताओं इदरीस खट्टक, अली वजीर और महरंग बलूच पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी हिरासत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह द्वारा की गई है। इसमें चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: केन्या में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आई बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन से एलगियो मार्क्वेट काउंटी के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार क्वाले काउंटी और किटुई काउंटी में 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाव को न युद्ध न शांति की स्थिति बताया, साथ ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत। अमेरिका द्वारा 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद जर्मनी ने यूरोप से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रात जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम नवनीता अधिकारी श्रीवास्तव विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Iran describes ongoing tensions with US and Israel as state of no war, no peace, highlights long

0: Stay tuned for the news in Hindi. The news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी

छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र
0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இரவின் மடியில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly election.

0: தகஜம் தகஜம் தகஜம் தகஜம்
1: தகஜம்

0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान

0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Hill.
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of

0: இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்திருக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और

प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए।

0: थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held tomorrow. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. The National